सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख निरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाकीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तो ओदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं ओदे अगे। ता तन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकाग्र चित होके मोह के बोलन बोली है जित सुन दरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल कर दे। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी, तन गुरु नानक पातशाह।

सुख राजे हरिचंद्र घर नार सतारा लोचन रानी साध संगत मिल गाँव दे राती जाए सुने कुर्बानी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करदी रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे, जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा है, जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना आनंद मानना, क्योंकि ए वी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक दी लोड है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर दे नाम दी लोड है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन दी भुख लगदी है। पर ओ भोजन नाम दा छकदी है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लेनी चाहिए है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा भाई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भाई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरू ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर देता। राणी जदों कीर्तन सुनदिया कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नू की जवाब देवांगी, जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाओ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पुलजार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसे तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठया
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ

लेकिन इतने महाराज कहते हैं कि भटकना थक गई, थका देने वाली गल थक गई, श्रम थक गया। अरे उन्हां दी गल है जिन्हां नूं साहिब ने अपनी बाणी दे लड़ लाया है, अपना जस बख्शिया है।

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली। शुरुआत है मैं मूर्ख की केतक बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

नित्य सारे संभाले। प्रतपाले निसार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर जियो नाम परियो रामदास, हर जियो नाम परियो।

भाई बहुत मद जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो एक गुर ज्ञान बताई जन्नान के बिन आपा चीने मिटे ना।

कहायो पट अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लेके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब नमस्कार करते हैं।

दूसरे गुरु बने, गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ए देवी दे पुजारी सन, हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी दे दर्शन करन जाया करदे सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियां दे नाल देवी दे दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा कीता। भाई लैणा अपने साथियां नूं कहण लगे, मैनूं पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने, बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी।

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नू मिलनी है।

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under his wings and has become my protector.

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपां तपां दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते होए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखिया है उसने सब तो पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेक जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया है। एडी मां

महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहंदे न हो अपराधी। आज जो तुसी शब्द सरवन कर रहे हो गल्ली असी चंगियां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं, हे वाहेगुरु गल्ली असी चंगियां। असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं है वाहेगुरु। असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझदे हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी माड़े पासे जा रहे हैं। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे न, मैं तां रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उस दे लिखारी हन भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ दे वेद व्यास होंदे होए भी आप कहंदे न हों अपराधी, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हन ते पिछे बहुत संगत जा रही। किसे ने वेख्या भई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनिया संगतां जा रही हन, तां पुछन लगा भई ये कौन साहब हन। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भई ये कौन साहब हन। भाई साहब कहन लगे, भाई जे कुछ मेरे बारे पुछ रहा है तां इना नू ना पुछ, मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पुछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नू जदों पुछया गया ता भाई साहब कहंदे न भाई इना कोलो ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है तो मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बार मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दियो, ता भाई साहब कहन लगे हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विशास काती अकिरत घन मैं कोई ना रखंदा, सिमर मुरीदा टाडिया सतगुर बख्शंदा। आख्या मेरे वर्गे अपराधी और गुनाहगार नूं कोई थां सी, पर गुरु नानक दे दर ते मैनूं थां मिल गई। ते जिसने पुछया सी ना भाई ये कौन साहब हन, ओ एडी निम्रता वेख के भाई साहब दे चरणा ते विछ गया। भाई साहब दे चरणा ते विछ गया, आख्या जिदे सिख इतने महान हन ओदा गुरु कितना महान होवेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह आप निरंकार दा रूप होंदे होए भी आप कह रहे हन गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां।

जिन राम कहे, कोई अल्लाह आख लगे, कोई वाहेगुरु आख लगे, कोई राम राम आख की जावे, सब उस प्रभु दे नाम ने। सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नु किन्ने नामा नाल पकारिया है। रब एक है, प्रभु परमात्मा एक है, ते ए दुनिया बखरे बखरे नामा नाल पकार दी है। भी किस भी नाम नाल पकार लवो, बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा वो तर जाएगा।

कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

बेसवाद है। महापुरुष बाहर खलोते, बरसात हो रही है, सर्दी दी रुत है, कब रहे नी ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गए, सतपुरख आए ने, सेवा कर लवा। नस के गई ते दूध दा गलास लेके आई, बाबा जी शक लगो। महापुरुष आखन लगे, बची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पीना, इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना? तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारण वास्ते आंदे ने, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगे। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच तोता

तू राम बोलेगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरशां ने दुध सकिया, हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां नूं। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

श्री भगत जी के पातशाह दसवें प्रथम भगत सिमर का गुरु नानक लैन ते आए तिरंग गुरु ते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद राम सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई।

की करे जे सिखां दे मन विच ही प्यार ना आवे। पिछौर आनंदपुर साहब संगत आई, सारी संगत ने मथा टेकिया, सारे बैठ गए, पर एक बच्चा दूर खड़ा है। गुरु साहब नु बड़ा प्यारा लगा ते आवाज मार दी, बेटा साढ़े कोल आ,

सैव जी कहन लगे किदे जोगा आखो सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है तू कोई मां प्यो जोगा होता है कोई अपने आप जोगा कोई दुनिया जोगा कोई देश कौम जोगा तू किदे जोगा है जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछा बच्चे दे कर्म दे।

सामर्थ्य होवे पर अहंकार नहीं। तो रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे जोगा सिंह ने दावा ते बड़ा कीता है कि जदू मेरी लोड़ होवे मैं

जोगा सिंह चक्कर कट के आया और वो पहरेदार हाल भी खड़ा। फिर जोगा सिंह मुड़ गया, फिर चक्कर कट के आया पर पहरेदार दे हटदा नहीं। चक्कर कट दे अमृत वेला हो गया, ना ते जोगा सिंह मुड़िया ते ना गुरु साहब जी हटे। हुण जोगा सिंह ने मन विच सोचिया पहरेदार दे हटदा नहीं, मैं क्यों ना चबारे चढ़। जोगा सिंह ने हिम्मत की, जद पौड़ियां चढ़न लगा ते हुण गुरु साहब तू बर्दाश्त ना होया, एक दबका मारे हैं। ओ सिंगा किथे चले हैं, जापदा गुरु दा सिंह है तू, सोना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ विच कड़ा गात्रे कृपा तेड़ कशहरा पाए है। ओ जापदा गुरु दा सिंह चलिया वेसवा दे द्वारे, जा भज जा सोटा मारांगा ते, जा जाके बाणी पढ़, बाणी पढ़।

आपसे नफरत छट के छोटियां मोटियां गल्ला छट के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे घरां विच प्यार नहीं जिना घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगान नाल घर नहीं बनता घर बनता प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापियां दा आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे दी गल मन्नी जांदी है घर वो है जिथे नाम बाणी दा परवाह चलदा है घर वो है जिथे एक दूसरे नूं जी कह के बुलाया जांदा है घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुरु

चौथा नियम ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम जो गुरु कहिंदा उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नू रोशन करना अपने जीवन नू टालना। हुण छेवा नियम भाई साहब दसदियां थोड़ा समय थोड़ा ही खावे क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना संसार नहीं त्यागना ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहिंदियां अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहिंदे हन के जिन्हां विच ए शियां छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणां विच वसना। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।